0: उन्हें बदनाम करने के लिए आपने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती आपकी
1: ऐसा धंधा आपके खानदान
2: हजूर अली वाज़।